नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम समस्या समाधान, जहां हर परेशानी का मिलता है हल, जहां हर सवाल का होता है सरल और सटीक जवाब। जी हाँ दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन सही दिशा और सही सोच से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। और इसी क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई गई है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का कार्यक्रम सच्चा बचपन में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ जुड़ते हैं और आपसे बातचीत करते हैं तो एक नया विषय हमारे बीच में रहता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हमसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चों की आवाज को या फिर कह सकते हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी आपसे बातें रहेंगी उससे आप ये भली बात ही समझ जाएंगे श्रोता साथियों कि बच्चों की बातों को नजरअंदाज हमें नहीं करना है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में पहले मैं आपको गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाती हूँ, तो आइए पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: धड़कन मैं दिल।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और विषय के बारे में भी बताया था कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक रेडियो नाटक के माध्यम से ये जानेंगे कि सवाल पूछने की आदत बच्चों में किस प्रकार से विकसित की जा सकती है और साथ ही बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो समाज कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर बच्चों को चुप कराया जाता है कि इतने सवाल मत पूछो, बड़े बोल रहे हैं बीच में मत बोलो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बच्चे सवाल पूछना बंद कर दें तो सीखना भी रुक जाएगा। आज की हमारी कहानी है दो बच्चियों की, मीना और रीना की, जो हमें ये समझाएगी कि बच्चों के लिए सवाल पूछना क्यों जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं बच्चे सवाल पूछे जिससे समाज आगे बढ़े।
2: रीना, आज टीचर ने जो पानी की कमी के बारे में बताया मुझे समझ तो आया, लेकिन मेरे मन में इतने सवाल हैं कि मैं पूछ ही नहीं पाई। क्यों हमारे गांव में पानी कम हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते?
3: मीना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं डर गई पूछने से, कहीं टीचर डांट न दे या बच्चे हंसने लगे, इसीलिए चुप रहना ही ठीक लगा मुझे।
2: लेकिन अगर हम पूछेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? सवाल पूछना गलत नहीं है, यह सीखने का तरीका है। अगर मन में सवाल है और हम उसे दबा देंगे तो हम खुद ही अपने सीखने को रोक देते हैं शायद।
3: मीना, मैं जब भी घर कुछ पूछती हूँ तो कहते हैं इतने सवाल क्यों करती हूँ, इसलिए अब मैंने पूछना ही कम कर दिया। लगता है सवाल करना ही गलत है।
2: नहीं रीना, सवाल करना गलत नहीं है बल्कि जरूरी है। देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो हर चीज पूछता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसी से वह दुनिया को समझ पाता है ना। अगर हम उसे रोक देंगे तो उसका सीखना भी रुक जाएगा।
3: शायद इसीलिए कई बार हमें बातें समझ नहीं आती क्योंकि हम पूछते ही नहीं।
2: बिल्कुल, सवाल ही ज्ञान का पहला कदम है। चल सोचते हैं, अगर गाँव में गंदगी है और कोई सवाल ही नहीं पूछे कि सफाई क्यों नहीं हो रही, तो क्या कभी सुधार होगा?
3: नहीं, तब तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
2: और अगर बच्चे पूछे कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, सफाई क्यों जरूरी है, तब बड़े भी सोचेंगे कि सवाल बदलाव की शुरुआत होते हैं।
3: मीना, अब समझ आ रहा है सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जरूरी है। मीना, आज मैं हिम्मत करके टीचर से पूछूंगी, हम पानी कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं नहीं पूछूंगी तो शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी।
2: यही सही है रीना, और जब एक बच्चा पूछता है तो कई बच्चों को जवाब मिल जाता है। सवाल पूछना सिर्फ अपनी मदद नहीं, दूसरों की भी मदद है।
3: लेकिन मीना, लोग हंसे तो?
2: तो रीना, जो समझदार होते हैं वे सवाल की कद्र करते हैं, और जो हंसते हैं वे खुद सीखने से दूर रहते हैं।
3: मीना, अब मुझे लग रहा है कि हमने कहीं बातें इसलिए नहीं सीखी क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं, हम बस जो बताया गया वही मानते रहे।
2: यही तो समस्या है, अगर बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं तो समाज एक जगह रुक जाता है। नए विचार, नई सोच, नए समाधान सब सवालों से ही आते हैं।
3: मीना, तो क्या बड़े लोगों को भी बच्चों के सवाल सुनने चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, जब बड़े बच्चों को सुनते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब बच्चे आत्मविश्वास से बोलते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है।
3: मीना, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो समझ में नहीं आएगा पूछूंगी, चाहे स्कूल हो, घर हो या गांव हो, मैं अपने सवाल रखूंगी।
2: और मैं भी, हम दोनों मिलकर दूसरों को भी सिखाएंगे कि सवाल करना गलत नहीं बल्कि जरूरी है।
3: और अगर सब बच्चे सवाल पूछने लगे तो?
2: तब समाज बदल जाएगा, क्योंकि सवाल ही सोच को जगाते हैं।
3: मीना, आज मुझे समझ आया कि सवाल करना कमजोरी नहीं ताकत है, जो पूछता है वही सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।
2: और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं रीना,
1: तभी समाज आगे बढ़ता है, इसलिए सवाल पूछना बंद मत करो।
3: हाँ मीना, आज से हम सवाल पूछेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: यही हमारी असली जीत है। साथियों, जैसा कि अभी हमने मीना और रीना को सुना, आज की ये जो कहानी थी वो हमें ये बताती है दोस्तों कि समाज की प्रगति सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से शुरू होती है। जब एक बच्चा पूछता है कि ये क्यों है, कैसे है और कब है, तो यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है दोस्तों। जब घर, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों के सवालों को सम्मान देते हैं, तब सिर्फ बच्चे विकास की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं, बल्कि ज्ञान का दरवाजा भी खुलता है। इसलिए साथियों, हमें बच्चों की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो सिर्फ उन्हें जवाब ही नहीं मिलता, बल्कि उनके जीवन का रास्ता भी बनता है। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का दोस्तों, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर हम इस बात को एक बार गहराई से सोचें, तो हमें ये जानने को मिलेगा कि बदलाव की जड़ हमेशा एक सवाल से ही शुरू होती है, और कह सकते हैं कि बदलाव की जड़ में ही एक सवाल छिपा होता है। कभी दोस्तों किसी ने पूछा होगा कि ये ऐसे ही क्यों है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और वहीं से श्रोता साथियों एक नई दिशा शुरू होती है। हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है, वे हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं। अगर हम साथियों उनकी इन जिज्ञासा को दबा देंगे, तो हम उनके अंदर की सोच को सीमित कर देंगे। लेकिन साथियों अगर हम उन्हें खुलकर सवाल करने देंगे, तो वही बच्चे कल नए विचार लेकर आएंगे, नई समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों बच्चों के सवालों को कभी आप बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर समझें, क्योंकि यही सवाल कल का समाधान बनेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ साथियों नमस्कार।

0: तो जासे तिन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार, भिंडा तुरिये आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर, सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसवे महीने बाल ने आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
4: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
3: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हें

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जहाँ हम बात करते हैं स्वास्थ्य की और सही पोषण की, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है।
0: जी
1: बात करेंगे दोस्तों विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि साथियों अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द या चक्कर जैसी समस्याएं क्यों हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मनीषा, और वो है शरीर में जरूरी पोषक तत्व या फिर विटामिन की कमी। आज हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि विटामिन डी और B12 क्या होता है, इनकी कमी क्यों होती है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। साथ ही इससे कुछ प्राकृतिक तरीके भी हम जानेंगे जिससे इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में अनियमित खानपान और धूप से दूरी के कारण लोगों में पोषक तत्वों की कमी तेजी से बढ़ रही है। इसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी सबसे आम हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: ये दोनों विटामिन श्रोता साथियों हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, तंत्रिका तंत्र, खून के निर्माण और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे कि श्रोता साथियों हमें थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द, मानसिक तनाव देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है। इसका महत्व यह है कि हड्डियों और दांतों को यह मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ,
1: कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है मनीषा, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
0: जी हाँ,
1: अगर बात करें कि विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं तो दोस्तों, हड्डियों में दर्द रहता है, बार बार थकान हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी बनी रहती है, बच्चों में रिकेट्स की समस्या होती है और बुजुर्गों में हड्डियों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं होने लगती है।
0: जी हाँ,
1: और अगर बात करें कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप सबसे बड़ा स्रोत है। रोज सुबह आपको 8 से 11 बजे के बीच में 15 से 30 मिनट धूप लेनी चाहिए।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, ऐसे में चेहरे, हाथ और पैरों को आप खुला रखें। सनस्क्रीन के बिना हल्की धूप लेना काफी फायदेमंद होता
0: जी
1: है।
0: जी हाँ कशिश,
1: साथ ही आहार में भी कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि दूध और दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनका सेवन हमें अधिक करना है। साथ ही हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन से जुड़े जो चीजें होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं
0: जी,
1: उनका भी हमें सेवन करना है। और दोस्तों, अगर कमी बहुत ज्यादा लग रही है आपको, लक्षण बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ कशिश, अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि विटामिन B12 क्या है और इसका क्या महत्व है।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में साथियों मदद करता है। इसके कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि खून का निर्माण करना, दिमाग और नसों को स्वस्थ रखना, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना और साथ ही DNA निर्माण में भी ये मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कशिश, अगर हम बताएं श्रोता साथियों को कि विटामिन B12 के कमी के कारण क्या है। जैसे कि श्रोता साथियों, पाचन तंत्र की समस्या, उम्र बढ़ना, गैस्ट्रिक या आंतों की बीमारी, लंबे समय तक कुछ दवाइयों का सेवन करना, साथ ही कशिश अगर हम बात करें विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो श्रोता साथियों, कमजोरी और थकान हमें हो जाती है, हाथों में और पैरों में झंझनाहट से होती है,
1: बिल्कुल
0: चक्कर आना, भूख जैसी समस्याएं हमें हो जाती हैं, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है और साथ ही हमें जीभ में जलन या लालिमा दिखाई देती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, तो ऐसे में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने की हमें बहुत ज्यादा

0: शैली में भी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम हम करें, संतुलित आहार हम लें, तनाव कम करें और नियमित स्वास्थ्य जांच हमारी करवाते रहें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मनीषा हम देखते हैं कि जब हम नियमित रूप से हमारे शरीर की जांच करवाते हैं तो हमें लक्षण दिखने से पहले ही ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है या कौन सी समस्या हमें हो रही है, जिससे हम जल्द से जल्द अपना इलाज करा पाते हैं और हमें कोई गंभीर समस्या होती भी नहीं है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें, इसे लेकर हमारी बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों की मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हम विटामिन डी और B12 के लक्षणों, कारणों और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जान पाए थे जिससे हम विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। यही अगर कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में बताएं साथियों, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरागत जीवन शैली जैसे कि सुबह की धूप, घर का बना भोजन, शारीरिक श्रम, इन सब में ही दोस्तों स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। आधुनिक जीवन में हमने इन सभी चीजों से दूरी बना ली है साथियों, जिसका असर सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर हमें देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि विटामिन डी और B12 की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन इसे सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता से आसानी से दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप याद रखें कि जो धूप होती है वो आपका सबसे सस्ता और असरदार डॉक्टर हो सकता है। संतुलित आहार आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है और जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है दोस्तों। इसलिए अपने शरीर की सुनिए, सही पोषण उसे दीजिए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते रहिए साथियों।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पुराने समय में लोग प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते थे, जिससे उन्हें इन विटामिनों की कमी नहीं होती थी।
0: बिल्कुल।
1: सुबह जल्दी उठकर धूप लेते थे, ताजा और घर का बना हुआ भोजन करते थे, खेतों का काम और शारीरिक गतिविधियां भी करते थे। श्रोता साथियों, इन आदतों को अपनाकर आज भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इस तरह कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी आज भी सामान्य समस्या बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सही जानकारी और जागरूकता से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है श्रोता साथियों। प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि धूप और संतुलित आहार को अपनाकर इन विटामिनों की कमी से बच सकते हैं हम। साथ ही श्रोता साथियों, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम अपने शरीर की जरूरतों को समझें और समय रहते उचित कदम उठाएं। याद रखें साथियों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सही पोषण ही उसका आधार।
0: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें होती है जिसके कारण भी इन विटामिन को बढ़ावा मिलता है, इन विटामिन्स की कमी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करने लगे हैं, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें हैं हमारी श्रोता साथियों, साथ ही हम देर रात तक जागते रहते हैं और फास्ट फूड का हम बहुत ज्यादा सेवन करने लगे हैं, जिसके कारण हमारी जीवन शैली बदल चुकी है मनीषा।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो आदतें हैं वो शरीर के पोषण संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे हमारे अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए दोस्तों, हमें पारंपरिक खानपान को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय भोजन में कई ऐसे तत्व हैं जो शरीर को संतुलित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, छाछ, दही, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दोस्तों ये सीधे विटामिन डी या फिर B12 हमें नहीं देते, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाकर इनके अवशोषण में मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसका हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंध भी बता सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि मनीषा, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि इन विटामिन्स की कमी का असर हमारे दिमाग और मन पर भी पड़ता है। इससे श्रोता साथियों, हमारा मूड खराब रहता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं और ध्यान केंद्रित करने में भी हमें कठिनाई होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी हमें इनकी कमी को पूरा करना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि विटामिन डी और B12 केवल शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
0: जी जी।
1: इनकी कमी श्रोता साथियों, नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी समस्याओं को आमंत्रित करना है। यदि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें साथियों, जैसे कि धूप लेना, संतुलित आहार को अपनाना और सक्रिय रहना, तो इन समस्याओं से कशिश हम आसानी से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर के लिए दवाइयों से ज्यादा जरूरी है सही आदतें।
0: जी बिल्कुल।
1: धूप, संतुलित भोजन, सक्रिय जीवन, यही है असली उपचार।
0: बिल्कुल मनीषा, तो हम कह सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत से ये बात साफ हो जाती है कि विटामिन डी और B12 की कमी केवल एक पोषण समस्या नहीं है,
1: जी
0: बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली का श्रोता साथियों संकेत है।
1: बिल्कुल।
0: हम जितना सुविधा और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही धीरे धीरे अपने शरीर की मूल आवश्यकताओं से भी हम दूर होते जा रहे हैं साथियों।
1: जी हाँ।
0: आप याद रखिए कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे केवल चलाते रहना ही काफी है, बल्कि ये एक जीवंत व्यवस्था है जिसे सही समय पर सही पोषण, धूप और आराम के साथ साथ देखभाल की भी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि कोई अच्छा स्वास्थ्य किसी दवा की दुकान में नहीं मिलता, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छुपा होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम जागरूक हो जाएं तो कल हमें किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार को जागरूक बनाएं और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: जी हाँ,
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ मनीषा, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी
1: जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: जी हाँ।
1: और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: समस्या समाधान हमारा वारा अमर हंग्र भाई बुनो ने आपनी बोन अंजलि
1: ने आपनी बोन जागृति नु राम राम।
0: भाई बोनो आप हम रेडियो हो आप लोग सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों घनमान स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोन लेने हाजिर थी गया कार्यक्रम समस्या समाधान लेने एक ना विषय ने हाथे आज ना कार्यक्रम ने माध्यम थे की अंजलि बोन आज आप बात कर रहा हूँ कि जंक फूड नी जे आदत है ई आपणे घणी वधी गई है तो इना थकी हूँ समस्या थाय ने जे समस्या थाय एनु समाधान हूँ थई शके तो आपणे वाते करंगा समस्या समाधान कार्यक्रम में जंक फूड ने लईने पण कार्यक्रम नी शुरुआत में आपणे हांभळेला गीत ने मोरी कर आपणी वाते
0: होवे तो भाईन बोनो आप हांभळता रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक होता है ये दिन। जहाँ दवा काम करती है वहाँ देखभाल जीवन देती है, और जहाँ उम्मीद टूटने लगती है वहाँ एक नर्स मुस्कान बनकर खड़ी होती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, हर वर्ष 12 मई यानी कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन नर्सों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती है।
0: जी हाँ।
1: नर्स केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं होती बल्कि वो मरीज के लिए हिम्मत, भरोसा, सहारा बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार, दर्द, डर से गुजर रहा होता है तब सबसे पहले उसके पास जो व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है वह अक्सर एक नर्स ही होती है। सामुदायिक जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है श्रोता साथियों।
0: हाँ।
1: गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, हर इंसान को कभी न कभी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे समय में नर्सों की भूमिका बहुत ही बड़ी होती है।
0: जी
1: हाँ। कारण है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस केवल एक औपचारिक दिन नहीं है बल्कि मानवता की सेवा करने वाला, उन हाथों के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला अवसर है जो बिना थके लोगों की देखभाल करते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मानव जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति बीमार होता है तब उसे दवा के साथ साथ सहानुभूति और देखभाल की भी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: अस्पतालों में डॉक्टर का रोग उपचार करते हैं, लेकिन रोगी की हर देखभाल करने के लिए नर्स करती है। नर्स केवल एक स्वास्थ्य कर्मी नहीं होती है साथियों, बल्कि वह रोगी के लिए एक मार्गदर्शक, सहायक और कई बार परिवार जैसे बन जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस सेवा, त्याग और समर्पण को सम्मान देने के लिए श्रोता साथियों, हर वर्ष 12 मई यानी कि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। श्रोता साथियों, यह दिवस उन सभी नर्सों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है जो दिन रात मानव सेवा में लगी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: चाहे अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आपदा की स्थिति हो या महामारी का समय हो, नर्स हर स्थिति में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है। अंजलि जी,
1: जी हाँ।
0: उनका जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के समय में जब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तब नर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए उनका योगदान अत्यंत आवश्यक है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि नर्सों के महत्व को समझने और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। साथियों,
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने नर्सिंग को केवल एक काम नहीं बल्कि मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम बनाया।
0: बिल्कुल।
1: युद्ध के समय घायल सैनिकों की सेवा करके उन्होंने यह साबित किया कि देखभाल और करुणा भी इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके कार्यों से प्रेरित होकर पूरी दुनिया में नर्सिंग सेवा को नई पहचान मिली। आज भी लाखों नर्सें उसी सेवा भाव को आगे बढ़ा रही है।
0: जी हाँ।
1: नर्स का अर्थ केवल इंजेक्शन लगाना या दवा देना नहीं होता है। एक नर्स जो होती है वो मरीज की स्थिति लगातार उस पर नजर रखती है, डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद का काम करती है, परिवार को भरोसा देती है, मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आपातकाल में तुरंत सहायता करती है और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की देखभाल करती है।
0: जी हाँ।
1: अक्सर देखा जाता है कि मरीज डॉक्टर से कम और नर्स से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि नर्स उसके साथ लंबे समय तक रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नर्सें होती हैं वो जागरूकता का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी होती है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में नर्सें ही स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य आधार बनी होती हैं। वे टीकाकरण करती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देती हैं, लोगों को बीमारियों से बचाव के तरीके समझाती हैं और गाँव में कई लोग नर्सों पर डॉक्टर से अधिक भरोसा भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि नर्स वह व्यक्ति होती है साथियों जो रोगियों की देखभाल करती है, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती हैं, उनकी स्थिति पर नजर रखती हैं जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था, और साथ ही हम देखते हैं कि मानसिक रूप से उन्हें मजबूत भी बनाती हैं। किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था श्रोता साथियों नर्सों के बिना अधूरी मानी जाती है। नर्स का कार्य केवल इंजेक्शन लगाना या दवा देना नहीं होता, बल्कि वह रोगी की पूरी स्थिति को समझती है, वह मरीज की परेशानी को सुनती है, उसे हिम्मत देती है और उसके परिवार की आवश्यकता अनुसार जानकारी भी प्रदान करती है। समाज में श्रोता साथियों, नर्सों का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि वे स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ होती हैं। डॉक्टर रोग की पहचान और उपचार करते हैं, लेकिन उपचार को सफल करने के लिए नर्सों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कई बार श्रोता साथियों, रोगी अपने दर्द और चिंता को लेकर डॉक्टर को अधिक नहीं बता पाते हैं जितना कि वो नर्स के सामने बता पाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, एक माँ और नवजात शिशु की सुरक्षा में नर्सों का योगदान बहुत बड़ा होता है। प्रसव के समय, गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद की देखभाल में नर्स लगातार सक्रिय रहती हैं। वे महिलाओं को समझाती हैं कि समय पर जांच क्यों जरूरी है, पोषण कैसा होना चाहिए, बच्चों को टीका कब लगवाना है, सफाई का ध्यान कैसे रखना है और स्तनपान का महत्व क्या है। इससे मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने में मदद मिलती है। श्रोता साथियों, जब दुनिया ने कोरोना महामारी जैसी कठिन परिस्थिति देखी तब नर्सों उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। कई नर्सें लगातार घंटों तक पीपीटी किट पहनकर काम करती रही। उन्होंने मरीजों को दवा देने के साथ साथ मानसिक सहारा भी दिया। उस समय पूरी दुनिया ने महसूस किया मनीषा की नर्सें केवल कर्मचारी नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि एक योद्धा है। हर काम में मेहनत तो होती ही है लेकिन नर्सिंग में मेहनत के साथ भावनात्मक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। एक नर्स को रात रात भर जागना पड़ता है, गंभीर मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है, तनावपूर्ण वातावरण में काम करना पड़ता है, कई बार अपने परिवारों से दूर भी रहना पड़ता है, फिर भी वो मुस्कान के साथ मरीजों को संभालती है। यही सेवा भावना नर्सिंग को विशेष बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें अब आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि किस तरीके से नर्सिंग केवल नौकरी नहीं, सेवा है। श्रोता साथियों, समाज में नर्सों के प्रति सम्मान क्यों जरूरी है, इसको लेकर बात करें तो अक्सर लोग जो हैं वो डॉक्टर की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नर्सों के योगदान को उतना महत्व नहीं देते। जबकि अस्पताल की व्यवस्था में नर्सें रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं। हमें नर्सों को सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे मानवता की सेवा करती हैं, मरीजों को मानसिक ताकत देती हैं, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती है और समाज को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देती है। इससे सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हाल ही में कुछ वर्षों में महामारी के समय दुनिया में नर्सों की असली ताकत और समर्पण को देखा है। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे थे, तब नर्स अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा कर रही थी।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों की देखभाल की। कई नर्सें स्वयं बीमार हुई श्रोता साथियों, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा।
0: बिल्कुल,
1: इस कठिन समय में नर्सों ने साबित कर दिया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। महामारी ने समाज को यह समझाया है श्रोता साथियों कि नर्सों का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके योगदान को हर दिन याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि नर्सों को कई कई घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है। कई बार उन्हें रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक थकान भी बढ़ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि अस्पतालों में गंभीर मरीजों की देखभाल भी करना आसान नहीं होता है। इस समय तनाव और जिम्मेदारी उनके लिए और भी बढ़ जाती है। कई बार मरीज की स्थिति खराब होने पर नर्स मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है साथियों। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधा नहीं होती, ऐसे में नर्स कठिन परिस्थितियों का काम करके वहां पहुंचते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर नर्सों की अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पाती।
0: बिल्कुल,
1: हालांकि अंजलि जी, हम देखते हैं कि समाज में नर्सों का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी कई बार उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता, जिससे उनका वास्तविक हक नहीं मिल पाता है। साथ ही हम देखते हैं कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है।
0: बिल्कुल, हम देखते हैं कि आज भी कई नर्सें अनेक समस्याओं से गुजर रही है। कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होती है तो स्टाफ कम होता है। लगातार गंभीर मरीजों के बीच काम करने से मानसिक दबाव बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और संसाधनों की कमी रहती है। कई बार समाज नर्सों के कार्यों को सही महत्व नहीं देता। इन समस्याओं को समझना और समाधान करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। आज के युवाओं के लिए नर्सिंग एक सम्मानजनक और सेवा से जुड़ा करियर है। जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। नर्सिंग हमें सिखाती है धैर्य रखना, संवेदनशील बनना, दूसरों के दर्द को समझना, जिम्मेदारी निभाना और कठिन समय में मजबूत रहना। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों को लेकर समाज में जागरूकता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, लोगों को नर्सों के योगदान के बारे में बताया जा सकता है और ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को नर्सिंग के प्रति प्रेरित किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम को समझाया जा सकता है और यदि समाज जागरूक होगा तभी स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत बनेगी। एक डॉक्टर इलाज शुरू करता है, लेकिन एक नर्स मरीज को ठीक होने की उम्मीद देती है। नर्स का हाथ केवल दवा नहीं देता बल्कि भरोसा, साहस और जीवन की नई उम्मीद भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवता की सच्ची सेवा वही है जिसमें निस्वार्थ भाव हो। नर्सें अपने धैर्य, मेहनत और संवेदनशीलता से समाज को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करती हैं। वे केवल अस्पतालों की कर्मचारी नहीं बल्कि जीवन की रक्षक होती हैं। आज आवश्यकता मनीषा इस बात की है कि हम नर्सों के योगदान को केवल एक दिन तक सीमित न रखें बल्कि हर दिन उनके कार्य का सम्मान करें।
1: बिल्कुल,
0: हमें यह समझना होगा दोस्तों कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था का मस्तिष्क है तो नर्सें उसकी धड़कन होती है। जब कोई मरीज दर्द में होता है तब नर्स की आवाज उसे भरोसा देती है कि जब परिवार घबराता है तो नर्स का धीरे उसे संभालता है। जब जीवन उम्मीद खोने लगता है मनीषा, तब नर्स की सेवा इंसानियत का सबसे सुंदर रूप बन जाती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक अच्छी नर्स बनने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि कई मानवीय गुणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि श्रोता साथियों सेवा की भावना। नर्स के अंदर दूसरों की सहायता करने की भावना होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सेवा की भावना ही उसे कठिन परिस्थितियों में काम करने की शक्ति देती है। साथ ही श्रोता साथियों धैर्य की आवश्यकता होती है, रोगियों के साथ काम करते रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हर मरीज की स्थिति अलग होती है साथियों, इसीलिए नर्स को शांत रहकर कार्य करना पड़ता है। साथ ही श्रोता साथियों नर्स को मरीज के दर्द को समझना चाहिए और सहानुभूति रोगी और मानसिक मजबूती भी प्रदान करनी चाहिए। श्रोता साथियों अस्पतालों में अनुशासन का भी महत्व होता है, समय पर कार्य करना, नियमों का पालन करना नर्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि नर्सों को कठिन और जोखिम भरी परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। ऐसे समय में सांस उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्रोता साथियों हम देखते हैं कि नर्स समाज के लिए अनमोल होती हैं। उनका कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। इसीलिए श्रोता साथियों समाज का कर्तव्य है कि वे नर्सों का सम्मान करें और उनके योगदान को समझें। विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोता साथियों लोग नर्सों को महत्व के बारे में जागरूक करें। सरकार को भी नर्स के कार्यों को और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारे लिए मनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम उन्हें सम्मान दे सकें और उनके जो चीजें हैं वो उन्हें मिलनी ही चाहिए। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आ रही होगी। लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम एक और प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.1 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि नर्सों का जीवन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने तक ही नहीं,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि दूसरों की सेवा करने में भी होती है। आज के समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब समाज में स्वार्थ की भावनाएं बढ़ रही हैं, तब नर्सों का त्याग और सेवा हमें मानवता के सही अर्थों को समझाता है। युवाओं को नर्सों के प्रेरणा, श्रोता साथियों, समाज के लिए भावना विकसित करने में मदद करती हैं। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत में नर्सिंग सेवा लगातार आगे बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में लाखों नर्स कार्यरत हैं, श्रोता साथियों।

0: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी विशेष योगदान दिए जा रहे हैं। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि नर्स का कार्य केवल चिकित्सा सेवा तक ही सीमित नहीं होता है, वह मानवता की सच्ची मिसाल होती है। जब कोई रोगी दर्द में होता है साथियों, तब नर्स उसकी देखभाल कर उसे आशा देती है, उसको मुस्कान देती है, मधुर व्यवहार करती है और मरीज के मन में विश्वास दिलाती है।
1: जी हाँ।
0: मानवता की सेवा करने वाले लोक श्रोता साथियों हमारे समाज के लिए सम्मान का पात्र बनते हैं। नर्स अपने कार्यों को सिद्ध करती है, प्रेम, सेवा और करुणा से दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस केवल एक विशेष दिन नहीं बल्कि उन अनगिनत त्यागों और सेवाओं को याद करने का अवसर है जो नर्सें हर दिन चुपचाप निभाती हैं। जब कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा होता है तब दवाइयों के साथ उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है अपनापन, धैर्य और भरोसा।
0: जी हाँ।
1: और यही भरोसा एक नर्स अपने व्यवहार में सेवा और संवेदनशीलता से देती है। समाज में अक्सर बड़े कार्यों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कई बार किसी मरीज का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देना भी उतना ही बड़ा काम करता है। नर्सें यही काम हर दिन करती हैं। वे केवल अस्पताल की व्यवस्था नहीं संभालती बल्कि इंसानियत को जीवित रखने का एक काम भी करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनकी मुस्कान कई मरीजों के डर को कम कर देती है और उनका धैर्य परिवार को टूटने से बचा देता है।
0: जी हाँ।
1: मनीषा, आज के समय में जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है तब स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व अधिक बढ़ गया। ऐसे में नर्सों की भूमिका केवल इलाज तक सीमित नहीं रही बल्कि वे जागरूकता, देखभाल और मानसिक सहारा और सामाजिक स्वास्थ्य सुधार का भी माध्यम बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: गाँवों, कस्बों और दूर दराज क्षेत्रों में नर्सें कई लोगों के लिए पहली स्वास्थ्य सहायता बनकर सामने आती है। यह सेवा केवल पैसा नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण है।
0: बिल्कुल।
1: हमें यह भी समझना होगा कि नर्सों को सम्मान देना केवल ताली बजाना या शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके लिए बेहतर कार्य, वातावरण, सुरक्षा, उचित सुविधाएं और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: जब स्वास्थ्य कर्मी को सम्मान मिलेगा तभी समाज व्यवस्था में स्वस्थ और संवेदनशील बन पाएगा। कह सकते हैं कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि नर्सें हमारे समाज की अनमोल शक्ति है।
0: जी हाँ।
1: उनके अनुभव, संघर्ष और सेवा की कहानियां लोगों को प्रेरित कर सकती हैं। युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि नर्सिंग केवल रोजगार नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जा सकता है कि नर्सें अस्पतालों की दीवारों के बीच काम करने वाली साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि उम्मीद की वह रोशनी है जो कठिन समय में भी इंसानों को जीने का साहस देती है।
0: बिल्कुल।
1: उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची मानवता दूसरों की सेवा में छिपी होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें केवल धन्यवाद कहना नहीं बल्कि सेवा, करुणा और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। नर्स उनके लिए भोजन, दवा और आराम का विशेष ध्यान रखती है। साथ ही हम देखते हैं कि रोगी के परिवार की उसकी स्थिति के बारे में जानकारी भी देती है, उन्हें मानसिक रूप से संभालती है और इसी में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि नर्सों का कार्य केवल चिकित्सा तक ही सीमित नहीं होता है, वे रोगी के मन की पीड़ा को भी समझती है। जब श्रोता साथियों, कोई मरीज दर्द में होता है तब नर्स एक मधुर शब्द से उसे राहत देती है। कई बार रोगी अपने परिवार से दूर अस्पताल में अकेला होता है, ऐसे समय में नर्स उसे परिवार जैसा अपनापन देती है। यही कारण है कि मरीजों के जीवन में नर्सों का स्थान विशेष होता है।
1: बिल्कुल।
0: मानवीय संवेदना ही नर्सिंग सेवा की सबसे बड़ी ताकत है साथियों। यदि सेवा में प्रेम, करुणा न हो तो चिकित्सा अधूरी मानी जाती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अक्सर सीमित होती हैं। वहां नर्सें लोगों के लिए आशा की किरण बनकर कार्य करती हैं। हम देखते हैं कि वे मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के प्रति भी कार्य करती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती हैं और प्राथमिक उपचार करती हैं। श्रोता साथियों एक कुशल नर्स बनने के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नर्सों को शरीर के ज्ञान, विज्ञान, श्रोता साथियों दवाइयों, रोगों और रोगियों की देखभाल से जुड़ी बातों का ध्यान रखना होता है। प्रशिक्षण के दौरान श्रोता साथियों उन्हें अस्पतालों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाता है। यह कार्य केवल ज्ञान तक ही नहीं बल्कि धैर्य और सेवा की भावना का भी होता है। आज देश में श्रोता साथियों अनेक नर्सिंग संस्थाएं युवाओं के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रही है। यह क्षेत्र रोजगार के साथ साथ समाज सेवा के अवसर को भी प्रदान करती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जहां सेवा में स्वार्थ नहीं होता वहीं इंसानियत सबसे खूबसूरत दिखाई देती है।
0: जी हाँ।
1: नर्से केवल जीवन बचाती नहीं बल्कि टूटे हुए मन को फिर से उम्मीद देना भी जानती है। एक स्वस्थ समाज के पीछे कई नर्सों की अनगिनत जागती रातें छिपी होती हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, नर्सों का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, धैर्य कठिन समय को आसान बना सकता है, संवेदनशीलता इंसान को महान बनाती है,
0: बिल्कुल
1: दूसरों की मदद करना मानवता की पहचान है, जिम्मेदारी निभाना समाज को मजबूत बनाता है। यदि समाज इन मूल्यों को अपनाएगा तो आपसी सहयोग और विश्वास और अधिक मजबूत हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को लेकर बातें जारी हैं और ये बातें आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया है कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि नर्स केवल मरीज की बीमारी नहीं देखती बल्कि उसके दर्द, डर और भावनाओं को भी समझती है।
1: जी हाँ,
0: कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होता है, परेशान होता है या मानसिक रूप से टूट चुका होता है।

0: जागरूकता अभियान चलाती हैं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान देती है। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। श्रोता साथियों, कई ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां आज नर्सिंग को अपने करियर के रूप में चुन रही हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज सेवा का अवसर भी पा रही हैं। नर्सिंग ऐसा क्षेत्र है जहां संवेदनशीलता और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज में मान पाने का भी माध्यम बन सकता है। जब किसी गांव की बेटी नर्स बनकर अपने ही क्षेत्र के लोगों की सेवा करती है तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी कहीं परिवर्तन आए हैं। नई तकनीकी आधुनिक उपकरणों ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है, इन सभी तकनीकों ने सही ढंग से संचालित करने से नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज की केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है नर्स, वे अनुशासन, अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य परामर्श और सामाजिक सेवाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि समाज को नर्स के प्रति सम्मान, कृतज्ञता की भावनाएं रखनी होंगी।
0: जी जी,
1: कई बार लोग केवल डॉक्टर की प्रशंसा करते हैं जबकि नर्सों के योगदान को भूल जाते हैं। श्रोता साथियों, हमें समझना चाहिए कि बिना नर्सों के कोई भी अस्पताल सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता। सरकार और समाज को मिलकर नर्सों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। और साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि नर्सों का जीवन हमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण सीखें देता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दूसरों की सहायता करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: सेवा और करुणा से सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है साथियों। साथ ही सच्चा सम्मान वही है जो मानवता की सेवा से मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को नर्सों के समर्पण और प्रेरणा से समाज की भावनाओं को विकसित करनी चाहिए। श्रोता साथियों, यदि अस्पताल को एक शारीरिक मान लिया जाए तो नर्स उसकी धड़कन होती हैं। उनके बिना स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना असंभव है। श्रोता साथियों, रोगी की छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखने से लेकर श्रोता साथियों आपातकालीन स्थिति में सहायता करने तक हर जगह नर्सों की भूमिका दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी उपस्थिति में मरीज को मानसिक शक्ति मिलती है। यही कारण है कि नर्सों को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि नर्सिंग दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है।
1: श्रोता
0: साथियों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था केवल अस्पतालों से नहीं बल्कि सेवा भावना से मजबूत होती है। नर्सें उसी सेवा भावना की जीवित मिसाल है। उनका कार्य हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी संवेदनशीलता और सहयोग की भावना में छिपी होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें नर्सों का सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार, सोच और सहयोग से भी करना चाहिए। क्योंकि जो लोग दूसरों के दर्द को कम करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं वे वास्तव में समाज के सबसे अनमोल रक्षक होते हैं।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा श्रोता साथियों आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार साथी श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है साथियों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटापुर से है, फिल्म का नाम है डॉन। गीत के बोले दोस्तों, अरे दीवानो मुझे पहचानो। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाकिर मुलानी, सोबिया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग, चैतन्य हाटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कुशल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों, आर्य नगर कोक्का बिलाई से है उत्तम सिंह जंगेल, मोरसी जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल जी। सुकरी कला से अमित जंगेल, कुशल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।
1: सुनिए, मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती है। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए।
2: तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: दरवाजा खुला ही रखो संतरी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन इस बार इस दरवाजे से बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए आऊंगा।
4: अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और टेढ़ा हो जाएगा।
5: शाखाल, इसकी चाल को समझो। ये चाहता है तुम इससे झगड़ा करो ताकि पुलिस इसको हमसे अलग रख दे।
6: किसान को

0: आप मेरी मदद कर सकते हैं। मलिक साहब, हम चारों तरफ से गिर गए हैं।
1: हम नहीं,
0: तुम
1: जी। तुम मेरे चग्गू से निकल गए थे, लेकिन किस्मत ने प्लेट में रखकर तुम्हें वापस मेरे हवाले कर दिया।
2: कमांड बॉयज, कमांड टेक हिम।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंढरपुर सिटी से है। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोले ऐसी दीवानगी। साथियों, इस गीत के साथ चुना चार सुनीता जी, प्रशांत जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलक्षणा भगत जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों जिला खरगोना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगपत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन, बेबी, आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी और भी साथी जुड़ रहे हैं। जिला भागपत से है आसिर अली खान, मोमित नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला भागपत से है जगमोहन सिंह, सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नेतुन जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच महाराष्ट्र से ही, गीत के बोले पल दो पल का साथ हमारा। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। मंजू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना एमपी से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों नेपाल नगर मध्य प्रदेश से है सुदय शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। महाराष्ट्र से है शंकरलाल जयसवाल, गणेशवाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जी, दुर्गेश्वरी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी जुड़े रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो दोस्तों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच भागपत से ही। गीत के बोल है, छोड़ के ना जाओ पिया। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे अब्दुल्ला संतावासी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, गश डुलवारा से ही शमशुल कमर राही, शाही फातिमा, आनंद खान, फैनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एनलिजा नाइबा और लड्डू जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराजा कृतपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच खड़वा मध्य प्रदेश से है। फिल्म का नाम है मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। दोस्तों इस गीत के साथ गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बेबी शालिमा डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जखीरा डावर, बेबी आशा जी खत्री, जिला दायपुरी से है मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाखिर जी खत्री जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, कश्मीर से पीर ज़्यादा मेराज उद्दीन, नजमा उद्दीन, केसर उद्दीन जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केसु रिधान खुराना जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच छत्तीसगढ़ से ही। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल, गीत के बोले पल पल दिल के पास। इस गीत के साथ साथियों जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू जी, और भी साथी सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। छत्तीसगढ़ से है विनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी जी, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार जी, हेयाश कुमार चंदन जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों नेहरू चौक पोढ़न से है डॉक्टर सूरज यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत जी, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओमनाथ यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारे अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच भिवानी से ही। गीत के बोले चोरी चोरी दिल तेरा चुरा लेंगी। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे हैं कृष्णा मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुणाल मेरा जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, भोपालगढ़ राजस्थान से ही धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा जी, पूजा परिहार जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों जिला मुरादाबाद से ही मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सूरज, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलविंदर सिंह जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोले दोस्तों जुगनी जुगनी। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, सहारनपुर से सैयद मंसूर, ईशान हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषमा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुंभार जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों रायगढ़ से है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान जी, उत्कर्ष चौहान, और भी साथी सुनना चाह रहे हैं। नवाशर पंजाब से है गंगदीप थांडी, तृप्ता कुमारी जी, डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर प्रिया जी, बेबी वामिका थांडी, वामी थांडी जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्त शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयु शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयु शिवाश, बेलतरा छत्तीसगढ़ से साथियों मोहन सिराज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है और सुबह 11 बजे से बना हुआ था आपके साथ हम जुड़े हुए थे। आप सभी सुन रहे थे सुबह 11 बजे से इसे प्रस्तुतकर्ता रीना के साथ में, और अब इसे आप सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो साथियों फरमाइशी के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ। फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश जो हमारे बीच आई है वो है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है अमरदीप। गीत के बोल है मेरे मन का बांवरा पंछी। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने, और फरमाइश करता महाराष्ट्र से जुड़ रहे पीएस नवाड़कर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार जी, आशीष मोहेरकर जी और भी साथी इसी गीत के साथ पसंद करते हैं। इसी गीत को अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना गुणा ने, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं, पसंद करते हैं इसी गीत को। सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं शबीर परवाना, शाहिद अली जी, मधुबनी से हैं ये। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से भी रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी, मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मुजोहान सैफी, लेबा मलिक, कासगंज से जुड़ रहे हैं ये। और भी दोस्त हैं बाटावरा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी जुड़ना चाह रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, बिलड़ा राजस्थान से। साथियों अम्बाला हरियाणा से भी श्रोता साथी पसंद करते हैं इसी गीत को। नाम बता दें आपको, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका जी, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे मन का बांवरा पंछी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, मेरे मन का बांवरा पंछी बार बार डोले, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राजा, गीत के बोल है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी ने, और ये फरमाइश आई है रोहतक से। जुड़ रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट। बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू। बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनामा दीपा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी साथी जुड़ रहे हैं एजिराज खासी, खातून और आसमा अंसारी जी। गंज जुड़वारा से श्रोता साथी हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोडकर। गंजुड़वारा से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। यहीं उत्तर प्रदेश से श्रोता साथी हैं दीपक शाक्य, ज्योतिष शाक्य, सक्षम शाक्य। कलानोर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं आप क्या जाने से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। मैं आपको बताना चाहूंगी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, पापा जी नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुगू कोयल सिक्का। इसी बीच लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से है कमलकांत मरावी, पिलमिना मलावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। और भी साथी हमारे बीच जुड़ रहे हैं, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से हैं ये, धनोरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी। दोस्तों दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। बीर शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा और रामनिवास अग्रवाल जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आप क्या जाने से।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। फिल्म का नाम है रंग। ये फरमाइश हमारे बीच पोटियाकला दुर्गत से आई है और फरमाइश करता है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। इसी बीच हमारे और भी दोस्त इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों, जुड़ रहे हैं हमारे बीच में मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी, ईश्वर शर्मा जी, सुहानी शर्मा जी, हरिपाल कौर जी, सोनिया विपासा शर्मा और किरण ठाकुर जी। पुनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शिशासा सोनवाने और विशाखा मंगलकर जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं फजिलका पंजाब से हैं खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बुक जी। साथियों, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा जी और सोनम वर्मा जी। कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सनिका दले। पुनावलेपुरे से अजय सोनवानी, करिश्मा, अविका सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश ब्रिगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। साथियों, बीरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे जी। खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नासिर शेख, नाजर नासिर, शाजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा बीबी आराध्या साहू। ये श्रोता साथी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे इन श्रोताओं की फरमाइश है, दीवाना फिल्म का गीत पायलिया ओहो। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी साथियों, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इरकास नरगिस खातून जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं, चोकुनटी बुलंद शहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सिद्धवासी निघत प्रवीण अबासी, सैनवनाज अबासी, सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान अबासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त अवलपुर से हैं शेख हबीब जी, छोटू भाई शेख जी, साजन बेगम, फैजान शेख, फारूक शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा शेख, इरफान शेख जी, जिन्नत फरहान, अब्दुल्ला लोनेवाला और जाहिद और शाजिद शेख जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पायलिया, तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गंजुड़वारा गणेशपुर से। फिल्म का नाम है साथियों, चमत्कार। गीत के बोल हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। इस प्यारे से गीत की आवाज़ दी है इस गीत को कुमार सानू जी ने और अनु मलिक जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं फिरासत हुसैन, अलक कुमार जहां, मोहम्मद अल्फेज, नाहिरा गुड़िया, शिफा सवरीन जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं शिवाजी नगर खंडवा से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। अस्तपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रिजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी। गाजीपुर से आजाद अली, अनवर रिजवाना, परवीन अब्दुल्ला आजाद। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेदा, पुनम गगनेदा, विशाल प्रिया दिशानी, नियमित आहूजा जी। पिपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबरे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। जरूर वड़ूर महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चर्प, रजनी कानेरे जी। और भी दोस्त जुड़ रहे पुणे से, पंकज आर्य, प्रियंका बीटी बाड़ोदे। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है अनारकली बाजार जगराव से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों मैं हूं ना, गीत के बोल भी यही है क्योंकि ये एक शीर्षक गीत है। साथियों, फरमाइश करता है इस गीत को सुनना चाह रहे वो है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी। इसी बीच और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट, चश्मीन और प्रयागराज भट्ट जी, टीकमगढ़ी मध्य

हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, वेदेही जोशी, जयवंती केवट जी मध्य प्रदेश से हैं, अब्दुल गफार डावर जी इसी बीच जुड़ रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से भी, वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राधा, चित्र मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना जी, और भी साथी जोड़ रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से, उमा सिंह, महेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश जी। इसी बीच गंजुडवारा से शमशिल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। साथियों खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज आर्यन, आरोही, ऐशिका, श्वेता वर्मा जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैं हूं ना। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आप सभी से फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, जहाँ हर परेशानी का मिलता है हल, जहाँ हर सवाल का होता है सरल और सटीक जवाब। जी हाँ दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन सही दिशा और सही सोच से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। और इसी क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ, तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहां भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई अब्बावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
5: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
5: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारश्यर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं को लेकर। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस सफलता के पीछे केवल वैज्ञानिक प्रगति ही नहीं कशिश, बल्कि उन महान महिलाओं का भी योगदान है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से देश को गर्वित किया। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो हमारे मन में रॉकेट, उपग्रह और वैज्ञानिकों की छवि आती है, लेकिन इस छवि में भारतीय महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है भारतीय अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं को लेकर। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारश्यर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो आसमान से भी ऊंचा है और सपनों से भी बड़ा है। बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं को लेकर। दोस्तों, जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे नजर आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जागृति जी, जो इन तारों को छूने का साहस रखते हैं। और आज हम उन्हीं भारतीय बेटियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने साथियों धरती से उठकर अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं जागृति जी कि एक समय ऐसा था जब लड़कियों को सीमाओं में बांध दिया जाता था, लेकिन आज वही लड़कियां सीमाओं को तोड़कर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच रही है।
1: बिल्कुल कशिश, भारत में लंबे समय तक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को पुरुष प्रधान माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ ये धारणा बदली और महिलाओं ने भी अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कठिन क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं न केवल देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, इसके माध्यम से संचालित है। इसरो ने कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, ये सभी। इन मिशनों की सफलता में महिला वैज्ञानिकों का योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा है।
0: बिल्कुल।
1: आज इसरो में सैकड़ों महिलाएं वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही है। श्रोताओं, वे न केवल मिशन की योजना बनाती है बल्कि उसे सफलतापूर्वक लागू भी करती है।
0: बिल्कुल। आज हम देखते हैं श्रोता साथियों कि भारतीय महिलाएं सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि लीडरशिप के रोल में भी वे आगे आ रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि आपने बताया कि इसरो के कई ऐसे बड़े मिशन हैं जहां महिलाओं ने मिशन को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, यह बदलाव बताता है कि अब महिलाएं निर्णय लेने की भूमिका में मजबूत हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि अंतरिक्ष सिर्फ रॉकेट उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरी रिसर्च और टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है। दोस्तों, जैसे कि भारतीय महिलाएं आज सैटेलाइट डिजाइन, स्पेस डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल।
0: मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि स्पेस साइंस में करियर के नए रास्ते भी उनके द्वारा ही खोले गए हैं।
1: जी हाँ कशिश, जैसे कि अगर भारतीय महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पना चावला की। तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी।
0: बिल्कुल।
1: उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने अपने सपनों को साकार करते हुए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ काम किया और अंतरिक्ष यात्रा की। श्रोता, उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा 1997 में हुई और दूसरी 2003 में। दुर्भाग्यवश हम जानते हैं कि दूसरी यात्रा के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में उनका निधन हो गया। कल्पना चावला ने साबित कर दिया श्रोताओं कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो ये तो आपने बात की कल्पना चावला जी। अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें जिन्होंने अंतरिक्ष में लंबी उड़ान भरी थी, तो साथियों सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक महान अंतरिक्ष यात्री हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने अंतरिक्ष में 300 से ज्यादा दिन बिताए। वे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिलाओं में से एक मानी जाती है। हम देखते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया था।
1: बिल्कुल।
0: उनकी कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि लगातार मेहनत और अनुशासन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भारतीय अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं के बारे में, तो बातें ऐसे ही हमारे युवा साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और रुक करते हैं हम कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं को लेकर।
1: हमने
0: गीत से पहले कल्पना चावला जी के बारे में जाना था, सुनीता विलियम्स के बारे में जाना था। कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो आकाश भी छोटा पड़ जाता है। कशिश,
1: बिल्कुल
0: यही जानते हैं रितु करिधल के बारे में, यानी कि रितु करिधल को मंगलयान की रॉकेट वुमन कहा जाता है। उन्होंने भारत के मंगल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कशिश कहा गया है कि मेहनत की उड़ान से ही सफलता का आकाश मिलता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें मुथैया वनिता की, तो साथियों मुथैया वनिता ने चंद्रयान 2 मिशन की परियोजना में निदेशक के रूप में काम किया था।
0: बिल्कुल,
1: यह मिशन साथियों भारत का चंद्रमा पर उतरने का प्रयास था। भले ही लैंडर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाए जागृति जी, लेकिन मिशन ने भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने रखा।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, ये बात हमें ये सिखाती है कि असफलता भी सफलता की ओर एक बढ़ता कदम होती है। इसी के साथ अगर टेसी थॉमस की बात करें, जो कि मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया मानी जाती है। दोस्तों टेसी थॉमस का योगदान सीधे अंतरिक्ष से जुड़ा नहीं है, लेकिन वे भारत की मिसाइल तकनीक की रीढ़ मानी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि उन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
0: जी हाँ,
1: उनकी कहानी हमें ये बताती है साथियों कि विज्ञान और तकनीक में महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, कहा गया है कि नारी शक्ति जब जागती है तो इतिहास बदल देती है। यही जानते हैं नंदिनी हरिनाथ के बारे में। श्रोताओ, नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में अपना योगदान दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वे भी मंगलयान मिशन की प्रमुख टीम का हिस्सा थे। कशिश, उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो विज्ञान में करियर बनाना चाहती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, ज्ञान और मेहनत से हर मंजिल को आसान किया जा सकता है। भारतीय महिलाओं ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जैसे कि उपग्रह निर्माण, रॉकेट डिजाइन, मिशन योजना, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और विकास। विशेष रूप से चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में महिला वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका रही है। कशिश,
1: बिल्कुल।
0: हालांकि श्रोताओं, महिलाओं ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उन्हें भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
1: जी
0: जैसे
1: हाँ।
0: कि सामाजिक बाधाएं भी आई है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आई है, पुरुष प्रधान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का युग भी था, संसाधनों की कमी भी थी, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता हासिल की है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो साथियों, जब मंगलयान मिशन सफल हुआ था तो पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी।
0: बिल्कुल,
1: इस मिशन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी, जिससे यह संदेश गया था कि भारतीय महिलाएं भी ग्लोबल साइंस कम्युनिटी में बराबरी से योगदान दे रही हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो आज नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सामने आई हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि कल्पना चावला और रितु करिधल जैसी महिलाएं जो हैं, वो आज लाखों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। साथियों, स्कूलों और कॉलेजों में जब लड़कियां खुलकर कहती हैं कि हमें भी वैज्ञानिक बनना है और हमें भी अंतरिक्ष में जाना है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। अब समाज धीरे धीरे इस सोच को स्वीकार कर रहा है जागृति जी, कि लड़कियां भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उन्हें भी बराबर के मौके दिए जा सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, जैसे कि हमने पहले बताया था कि महिला वैज्ञानिकों का योगदान रहा है उपग्रह निर्माण, मिशन योजना, अनुसंधान विकास को लेकर, और जैसे उनके लिए कुछ बाधाएं आई थी, यहीं अगर समाज पे प्रभाव को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो इन महिलाओं की सफलता का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
1: जी हाँ,
0: लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरणा मिली है, विज्ञान और तकनीकों में रुचि बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। आज हम देखते हैं कि गांव और छोटे शहरों की लड़कियां भी बड़े सपने देखने लगी है।
1: बिल्कुल,
0: भारतीय महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी है और असफलता से डरना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही इतिहास रखते हैं। तो श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नारी केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती बल्कि देश को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता है कि हम इन महिलाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास को अपनाएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आसमान छूने का सपना देखने वालों के लिए जमीन की सीमाएं मायने नहीं रखती। और याद रखिए, जब नारी आगे बढ़ती है तो देश भी प्रगति की नई उड़ान भरता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी शुरुआत कब बड़ी सफलता का रूप ले लेती है हमें पता नहीं चलता।
0: बिल्कुल
1: साथियों, इन सभी महिलाओं की शुरुआत वैसे तो बहुत साधारण थी, न कोई बड़ी सुविधा और न ही कोई शॉर्टकट, लेकिन उन्होंने लगातार सीखना जारी रखा दोस्तों।
0: जी हाँ।
1: खुद को बेहतर बनाया, हार नहीं मानी और यही उनकी सफलता का राज बना। दोस्तों, अगर आप आसमान को देख रहे हैं तो सिर्फ उसे निहारिए मत, उसे पाने का सपना भी देखिए।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि आज की भारतीय बेटियां ये साबित कर चुकी हैं कि सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है विदा लेने का। तो जाने से पहले एक और गीत हमारे श्रोता साथियों को हम सुनवाना चाहते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जिसे

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे ना कोई गरीबी रोके ना कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी में तर लगी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दी दू ने मने की दू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूधस पीवू है।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का कार्यक्रम सच्चा बचपन में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ जुड़ते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, तो एक नया विषय हमारे बीच में रहता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हमसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चों की आवाज को या फिर कह सकते हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी आपसे बातें रहेंगी, उससे आप ये भली भांति समझ जाएंगे श्रोता साथियों कि बच्चों की बातों को नजरअंदाज हमें नहीं करना है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में पहले मैं आपको गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाती हूँ, तो आइए पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले कुछ बातें मैंने आपको बताई थी और विषय के बारे में भी बताया था कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक रेडियो नाटक के माध्यम से ये जानेंगे कि सवाल पूछने की आदत बच्चों में किस प्रकार से विकसित की जा सकती है और साथ ही बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो समाज कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर बच्चों को चुप कराया जाता है कि इतने सवाल मत पूछो, बड़े बोल रहे हैं बीच में मत बोलो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बच्चे सवाल पूछना बंद कर दें तो सीखना भी रुक जाएगा। आज की हमारी कहानी है दो बच्चियों की, मीना और रीना की, जो हमें ये समझाएगी कि बच्चों के लिए सवाल पूछना क्यों जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं बच्चे सवाल पूछे जिससे समाज आगे बढ़े।
1: रीना, आज टीचर ने जो पानी की कमी के बारे में बताया, मुझे समझ तो आया, लेकिन मेरे मन में इतने सवाल हैं कि मैं पूछ ही नहीं पाई। क्यों हमारे गांव में पानी कम हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते?
2: मीना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं डर गई पूछने से, कहीं टीचर डांट न दे या बच्चे हंसने लगे, इसीलिए चुप रहना ही ठीक लगा मुझे।
1: लेकिन अगर हम पूछेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? सवाल पूछना गलत नहीं है, यह सीखने का तरीका है। अगर मन में सवाल है और हम उसे दबा देंगे तो हम खुद ही अपने सीखने को रोक देते हैं शायद।
2: मीना, मैं जब भी घर कुछ पूछती हूँ तो कहते हैं इतने सवाल क्यों करती हूँ, इसलिए अब मैंने पूछना ही कम कर दिया। लगता है सवाल करना ही गलत है।
1: नहीं रीना, सवाल करना गलत नहीं है बल्कि जरूरी है। देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो हर चीज पूछता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसी से वह दुनिया को समझ पाता है ना। अगर हम उसे रोक देंगे तो उसका सीखना भी रुक जाएगा।
2: शायद इसीलिए कई बार हमें बातें समझ नहीं आती, क्योंकि हम पूछते ही नहीं।
1: बिल्कुल, सवाल ही ज्ञान का पहला कदम है। चल सोचते हैं, अगर गांव में गंदगी है और कोई सवाल ही नहीं पूछे कि सफाई क्यों नहीं हो रही, तो क्या कभी सुधार होगा?
2: नहीं, तब तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
1: और अगर बच्चे पूछे कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, सफाई क्यों जरूरी है, तब बड़े भी सोचेंगे कि सवाल बदलाव की शुरुआत होते हैं।
2: मीना, अब समझ आ रहा है सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जरूरी है। मीना, आज मैं हिम्मत करके टीचर से पूछूंगी, हम पानी कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं नहीं पूछूंगी तो शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी।
1: यही सही है रीना, और जब एक बच्चा पूछता है तो कई बच्चों को जवाब मिल जाता है। सवाल पूछना सिर्फ अपनी मदद नहीं, दूसरों की भी मदद है।
2: लेकिन मीना, लोग हंसे तो?
1: तो रीना, जो समझदार होते हैं वे सवाल की कद्र करते हैं, और जो हंसते हैं वे खुद सीखने से दूर रहते हैं।
2: मीना, अब मुझे लग रहा है कि हमने कहीं बातें इसलिए नहीं सीखी क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं, हम बस जो बताया गया वही मानते रहे।
1: यही तो समस्या है। अगर बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं तो समाज एक जगह रुक जाता है। नए विचार, नई सोच, नए समाधान सब सवालों से ही आते हैं।
2: मीना, तो क्या बड़े लोगों को भी बच्चों के सवाल सुनने चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, जब बड़े बच्चों को सुनते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब बच्चे आत्मविश्वास से बोलते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है।
2: मीना, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो समझ में नहीं आएगा पूछूंगी, चाहे स्कूल हो, घर हो या गांव हो, मैं अपने सवाल रखूंगी।
1: और मैं भी, हम दोनों मिलकर दूसरों को भी सिखाएंगे कि सवाल करना गलत नहीं बल्कि जरूरी है।
2: और अगर सब बच्चे सवाल पूछने लगे तो?
1: तब समाज बदल जाएगा, क्योंकि सवाल ही सोच को जगाते हैं।
2: मीना, आज मुझे समझ आया कि सवाल करना कमजोरी नहीं ताकत है, जो पूछता है वही सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।
1: और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं रीना, तभी समाज आगे बढ़ता है, इसलिए सवाल पूछना बंद मत करो।
2: हाँ मीना, आज से हम सवाल पूछेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: यही हमारी असली जीत है।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमने मीना और रीना को सुना, आज की ये जो कहानी थी वो हमें ये बताती है दोस्तों कि समाज की प्रगति सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से शुरू होती है। जब एक बच्चा पूछता है कि ये क्यों है, कैसे है और कब है, तो यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है दोस्तों। जब घर, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों के सवालों को सम्मान देते हैं, तब सिर्फ बच्चे विकास की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं, बल्कि ज्ञान का दरवाजा भी खुलता है। इसलिए साथियों, हमें बच्चों की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो सिर्फ उन्हें जवाब ही नहीं मिलता, बल्कि उनके जीवन का रास्ता भी बनता है। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का दोस्तों, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर हम इस बात को एक बार गहराई से सोचें, तो हमें ये जानने को मिलेगा कि बदलाव की जड़ हमेशा एक सवाल से ही शुरू होती है, और कह सकते हैं कि बदलाव की जड़ में ही एक सवाल छिपा होता है। कभी दोस्तों किसी ने पूछा होगा कि ये ऐसे ही क्यों है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और वहीं से श्रोता साथियों एक नई दिशा शुरू होती है। हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है, वे हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं। अगर हम साथियों उनकी इन जिज्ञासा को दबा देंगे तो हम उनके अंदर की सोच को सीमित कर देंगे, लेकिन साथियों अगर हम उन्हें खुलकर सवाल करने देंगे तो वही बच्चे कल नए विचार लेकर आएंगे, नई समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों बच्चों के सवालों को कभी आप बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर समझें, क्योंकि यही सवाल कल का समाधान बनेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आपको

आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे कार्यक्रम सच्चा बचपन वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ साथियों नमस्कार।

0: सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ। भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू नाना राको वार। साफ सफाई राखजू खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी कोरा ने वालोर। रोपो खाओ सब्जिये डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी थूली सोका दाल। पांचवे महीने बाल ने आ खवानू आल। अणी वातनु ध्यान राखो आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
1: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह यहाँ आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भाई अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: हो वे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
1: हो वे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावारा मर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने इतना विषय ने हाते भाई बोनो आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातचीत विषय है कि अपने खेत ने तैयारी हरते कर रहा मिट्टी नु हदार हरते कर ताकि आवा वाली जी फसल है इनमें अपना ने असल उत्पादन मिली सके। तो मनीषा बुन अण विषय माते कार्यक्रम खेती बाड़ी में अपने भाई बुनो ते की घना करनी वाते थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन पहले अपने भाई बुनो ने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी वाते
0: होवी अंजलि बुन। तो भाई बुनो हमल तारे जो अपड़ू रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जरूर अणा गीत बाद आप सभी नो फेरे स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम के अंजलि बोन गिनत जिम के अंजलि बोन आपे विषय बताड़ियो हतु कि आज आपण बात करवा वाला हूँ कि आप खेत नी तैयारी हेते कर ने मिट्टी ने हदार हेते कर अणा खती आपणे फसल अच्छी उत्पादन मले
1: होवे तो मनीषा बोन अणा विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आपणे कार्यक्रम थकी जोड़ी रही मांगीलाल जी तो सप्ती की पहला आपणे हामरी लाडा नी वाते मोरे करा आपणी वाते
0: होवे अंजलि बोन
1: सर नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मिट्टी में नमी कैसे बनाकर रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गर्मियों का जो मौसम चल रहा है उसमें मिट्टी की नमी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी में नमी नहीं बनी रहेगी तो हमारी जो फसलें हैं वो सूख जाएंगी और हमें बहुत नुकसान होगा।
2: जी।
1: तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि गर्मी के मौसम में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए स्थानीय और परंपरागत क्या ऐसे उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए।
2: जी तो देखिए बहुत अच्छा विषय है और ये अभी है वर्तमान में हम गर्मी की बात करते हैं तो बड़ा सेंसिटिव है कि हमें कैसे नमी को बचाना है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि आज जो बदलते मौसम है आप देख रहे हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ में जो वर्षाएं भी कभी अनियमित तय हो रही है, कभी आती कभी नहीं आती है, तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समुदाय के सामने। और क्या होता है कि गर्मियों में क्या है कि जिससे सूर्य की किरणें सीधी मिट्टी पर पड़ती है या आपके खेत में पड़ती है तो स्वाभाविक है कि मिट्टी धीरे धीरे नमी अपनी खत्म कर देती है, तो इस तरह से दरारें पड़ने लगती है जैसे मिट्टी में आपने देखा होगा कई बार, तो ये जो गर्म जो हवाएं चलती है उससे भी मिट्टी है काफी सूखती है और उसकी नमी खत्म होती है।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा इसमें है कि हमें मिट्टी की नमी क्यों बनाए रखना जरूरी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो बीज जो अंकुरित होता है वो अच्छा होता है अगर नमी अच्छी होगी तो।
1: जी जी।
2: दूसरा है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो काफी गहराई तक जाती है, और तीसरा है कि जो पोषक तत्व है जो आपकी फसल को आसानी से मिलेंगे, इसके साथ में जो मिट्टी में जो केचुए या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अगर नमी है तो वो रहेंगी, अगर वो सूख जाएगी तो वो भी मर जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह जो फसल के सूखे और जो गर्मी जो सहन करने की क्षमता है फसल की वो भी बढ़ती है और बार बार सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आपका उत्पादन है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसी तरह हमें जरूरी है कि मिट्टी की नमी है वो बनाए रखना है। अगर हम बात करें कि परंपरागत जो हमारी विधियां हैं जो हमारे पूर्वज कई सालों से अपनाते आ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले खेत को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: जैसे कि आपने फसल कटाई की तो फसल कटाई के जो अवशेष होते हैं जैसे डंठल है या कुछ घास है तो इस तरह की चीजों को हमें उसी में छोड़ देना चाहिए।
1: जी जी।
2: दूसरा कि हमें कभी भी खेत में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग से सारे जो डंठल और जो भी आपके अवशेष है वो जल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और सीधी जो किरणें हैं वो आपकी खेत पर पड़ेगी, तो इस तरह से हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अगर देखेंगे हम कि अगर अवशेष आप खेत में छोड़ते हैं तो सबसे पहले तो एक तो मिट्टी है वो जल्दी नहीं सूखेगी आपकी, तेज हवा जो चलती है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगी, जो जैविक पदार्थ है वो बढ़ते हैं आपके क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है कीट और ये सारे पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
2: इसी के साथ में हम बात करें जैसे सूखी घास या भूसे की बात करते हैं जो एक मल्चिंग जैसा एक तरीका है हमारा, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत पुरानी पद्धति है हमारी और हमारे समुदाय की कि हम क्या करते हैं कि मिट्टी के ऊपर जो हमारा खेत है उसके ऊपर घास या हम बात करते हैं भूसा होता है उससे मल्चिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो धूप है सूर्य की वो सीधी आपके खेत में या मिट्टी पर नहीं गिरेगी, दूसरा है कि पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम होगा आपका, दूसरा खरपतवार है वो कम उगते हैं और मिट्टी हमेशा ठंडी रहती है मल्चिंग से। तो इसमें आप सामान्य से आप देख सकते हो जैसे गेहूं का भूसा है या मक्की के जो भूसे के पत्ते हैं, जंगल की जो पत्तियां हैं आपके सूखे पेड़ पौधों की, मूंग या हम बात करते हैं तुअर उसकी जो पत्तियां हैं उससे आसानी से जो आप उसकी मल्चिंग कर सकते हैं।
1: जी।
2: इसके साथ दूसरा तरीका है कि जो परंपरागत हम बात करते हैं तो मेड़बंदी, तो मेड़बंदी भी हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको खेत में लंबे समय तक जो है नमी बनाए रखनी है तो आपको मेड़बंदी की आवश्यकता रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसमें क्या होता है कि जैसे बारिश का समय आता है तो आपका जो खेत का पानी है वो बहकर नहीं निकलेगा और आपका खेत में आराम से वो समा जाता है, रुकता है और धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है जिससे लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इसके साथ मिट्टी का कटाव वो नहीं होता है क्योंकि पानी आपका खेत का बह के नहीं जा रहा तो कटाव के चांस नहीं रहेंगे। लंबे समय तक जो है आपकी नमी वो बनी रहेगी, और जो जल का स्तर है आपकी खेत की मिट्टी का वो ऊपर रहेगा और अच्छे से वो आपकी फसल को सहयोग करेगा।
1: बिल्कुल,
2: इसी तरह मिट्टी की जो है आप इस जो मेड़बंदी है वो कई तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने मिट्टी की ऊंची दीवार बना दी, या फिर आपने पत्थरों से मेड़ बनाई, या जो घास और जो झाड़ियां वाली जो जगह है तो आपने जैसे घास और झाड़ियां लगा दी, तो उससे भी क्या आपका कटाव और वो सारी चीजें नहीं होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता ही रहे हैं कि मिट्टी में नमी बनाने के क्या स्थानीय और परंपरागत तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए, तो क्या और भी ऐसे कुछ विशेष तरीके हैं जो हमारे किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
2: जी, तो इसी के साथ हम बात करते हैं, जैसे भी गर्मी का मौसम है तो गहरी जुताई की बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो अभी अगर आप 6 से 9 इंच तक अब गहरी जुताई करते हैं तो जो वर्षा का पानी है वो आसानी से आपकी खेत में उसमें धीरे धीरे वो समा जाएगा। तो एक गहरी जुताई है, इससे क्या हो कि जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी क्या होते हैं कि इससे मर जाते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी गहराई तक आपकी खुदाई होती है। इसके साथ में जो हवा का प्रवाह है वो भी उसमें बढ़ता है, ताकि उसमें अच्छे से जो आपकी मिट्टी है वो अच्छे से बन जाती है। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ में कि फसल की हम बात करते हैं तो मिट्टी की अगर नमी बनाए रखनी तो हमें मिश्रित खेती या हम हमारे यहाँ बोलते हैं हांगणी, हमें हांगणी को अपनाना चाहिए, जिसमें आप अलग अलग प्रकार 7 से 8 प्रकार के जो है फसलें वो लगाएं, जैसे मक्का है, तुअर है, आपके उड़द है, जवार है या मूंग है, और कुछ जो भिंडी की हम बात करते हैं भिंडी है, और कुछ बेल वाली जो सब्जियां या फल है आप उसमें डाल सकते हो।
1: बिल्कुल,
2: उससे भी क्या होता है कि आपकी नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। और ये जो है इसलिए उपयोगी है आंगनी हमारे यहाँ पे कि एक तो जमीन है वो ढकी रहती है, दूसरा है कि धूप का जो असर है वो बहुत कम पड़ता है मिट्टी पे और सीधा नहीं पड़ेगा, और मिट्टी है उसकी नमी है वो सुरक्षित रहती है। इसके साथ में मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी उसमें बनी रहती है। दूसरा की जो खाद होता है आपकी मिट्टी के अंदर वो नमी के कारण वो भी आपकी फसल को अच्छे से पोषण देता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं जैसे पेड़ों के माध्यम से, तो पेड़ भी क्या है कि आपकी नमी को बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ पौधे हैं जो मेड़ पे लगाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: और उससे आपको लकड़ी भी प्राप्त होगी, फल भी प्राप्त होंगे और आपकी नमी भी बनी रहेगी। तो इसमें जैसे हम नीम की बात करते हैं, महुआ है, करंज है, बांस है, सहजन है या इमली है, इस तरह के पौधे हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके खेत में छाया रहेगी, दूसरी छाया रहेगी तो आपकी नमी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल,
2: दूसरा जो पत्तियां हैं जो वहाँ पे गिरेगी आपकी तो वो एक मल्चिंग का काम करेगी और एक हरी खाद है वो तैयार होगी आपके खेत के लिए।
1: बिल्कुल,
2: दूसरा कि पक्षी और जीव भी उसके ऊपर आके बैठते हैं तो उनका संरक्षण तो होता ही है, लेकिन उनके माध्यम से कई प्रकार के जो है खाद आपको खेत को वहाँ पे मिलते हैं, वो दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: इसके साथ ही एक जो हम बात करते हैं नमी बनाए रखने के लिए वो होती है जैविक खाद, या अपन गोबर खाद की बात करते हैं। तो गोबर खाद क्या मिट्टी को जीवित बनाती है, दूसरा मिट्टी में जैविक पदार्थ है जैसे सड़ने लगते हैं या उसमें आप खाद डालते हैं तो उसमें जो जैविक पदार्थ उनकी वो बढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके माध्यम से भी आप है जो आपकी अच्छे से नमी को बनाए रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
2: इसके साथ में कंपोस्ट है, उकेड़ा है आपका, जीव अमृत है, तो इस तरह की जैविक जो खाद है उसका उपयोग करके आप नमी को बनाए रख सकते हैं, इससे आपका उत्पादन है वो भी काफी मात्रा में बढ़ता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बता रहे हैं कि परंपरागत और स्थानीय कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम मिट्टी की नमी को बनाए रख सकते हैं, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी हमारी आपसे हो गई है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: तो मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जो परंपरागत तरीके हैं जिनसे हमारे पूर्वजों ने नमी बचाए रखी है, उसी तरह से अब जो है इस वर्तमान के समय में हमें इन्हें अपनाना चाहिए और हमारी जो खेती है उसको सुरक्षित रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी धन्यवाद।
1: ભાઈન બોનો જેમ કે હવે આપણે વસંત માંગીલાલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે કે ખેતની તૈયારી ને મિટ્ટીનો હદાર આપણને હરતે કરવું હે
3: હવે
1: એણે આપણને બતાડ્યું કે સબતી કી પહેલે આપણને આપણે જે ખેતર હે એનમે ગહેરી જુતાઈ કરવી હોગા એની સાથે એનમે ગોબર ખાદ જે આપણે જૈવિક ખાદ નાખ એ આપણને એનમે નાખવા હે. એની સાથે મનીષાબોન એણે આપણને એ બી બતાડ્યું કે આપણે મિટ્ટીમાં નમી રાખવા બદલે કયા એવા જૈવિક ઉપાય હે જે આપણને અપનાવવા હોંગા. તો આશા કરો કે આ હંગરી વાત આપણે ભાઈ બહેનોને ગમી હોંગા અને એ ભી અણી પ્રકાર થકી આપણે ખેતરની તૈયારી અને મિટ્ટુનો હદાર કરીંગા. તો ભાઈ બહેનો વાતે ઘણા કરી થઈ ગઈ હે ને હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પાડવાનો. તો સૂટો તો પડ પણ સાથે પહેલા સાંભળી લઈએ કોર ગીતને મરે પડો સૂટો
0: હવે અંજલિ બોલ.

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध कर कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आंगनवाड़ी जाईने तारो नाम लगाओ भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ सोराना नक्काबजू नाना राको वार साफ सफाई राखजू खाजू सब्जी दार भिंडा तुरिये आलड़ी कोरा ने वालोर रोपो खाओ सब्जीए डीले आवे जोर सीरो दलियो राबड़ी थूली सोका दाल पांसवे महीने बाल ने आ खवानो आल अणी वातनु ध्यान राखो आपणो जीवन सुरक्षित राखो
1: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थके आवी तो देख्यो कि मुन्नी घणी रोई रही हती तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इने पानी पीवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीदो ने मने कीधो कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपड़े मुन्नी ने काय भी खवड़ावंगा तो इने दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूध ज पीवू है
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, रिश्तों में औपचारिकता बढ़ने के कारण और उपाय क्या हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस

0: सुरक्षा, अपनापन और सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में इन रिश्तों में एक अजीब सी दूरी बन गई है।
1: बिल्कुल,
0: औपचारिकता बढ़ती जा रही है। पहले जहां रिश्तों में सहजता थी, अपनापन था, दिल से जुड़ाव होता था, वहीं अब कैसे हैं आप जैसे शब्द केवल औपचारिकता तक सीमित रह गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बदलाव समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है श्रोताओं। इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते दिल से निभाए, औपचारिकता से नहीं। तो हमारी बातें भी इन्हीं विषय पर रहने वाली है, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है रिश्तों में औपचारिकता बढ़ने के क्या कारण और उपाय हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, हम देखते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। ये केवल खून के संबंधों तक सीमित नहीं होते श्रोता साथियों, बल्कि मित्रता, पड़ोस, कार्यस्थल और समाज के हर स्तर पर बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पहले के समय में जागृति जी रिश्तों में आत्मीयता, अपनापन और सहजता देखने को मिलती थी, लेकिन आज धीरे धीरे इन रिश्तों में औपचारिकता बढ़ती जा रही है। लोग मिलते तो हैं, लेकिन दिल से नहीं, बातचीत होती है परंतु उनमें भावनाओं की गहराई नहीं होती। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि औपचारिकता रिश्तों को खोखला बना रही है, जिससे जीवन में अकेलापन और दूरी बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में जागृति जी, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर रिश्तों में ये औपचारिकता क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम बात करें तो आज का जीवन अत्यधिक तेजी और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। हर व्यक्ति

0: इसलिए श्रोताओं, समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकता की कमी रिश्तों को दूर करती है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाया है, लेकिन इससे रिश्तों में दूरी पड़ गई है। अब लोग आमने सामने बैठकर बात करने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज या इमोजी से काम चला लेते हैं। इससे भावनाओं की गहराई कम हो गई है और रिश्ता केवल औपचारिक बन गया है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन तो जुड़े हैं लोग, पर दिलों के कनेक्शन कमजोर हो गए हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि औपचारिकता का अर्थ है ऐसा व्यवहार जो केवल दिखावे के लिए हो, जिसमें दिल से जुड़ाव न हो, जैसे कि हालचाल पूछना लेकिन सच में परवाह न करना, त्योहारों पर केवल मैसेज भेज देना, रिश्तों को निभाना लेकिन महसूस न करना। श्रोता साथियों, ऐसे रिश्ते बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि रिश्ते के लिए समय ही नहीं निकाल पाता।
0: बिल्कुल,
1: नौकरी, व्यापार, पढ़ाई सब कुछ प्राथमिकता बन जाती है, रिश्तों को समय मिलने पर निभाया जाता है। इससे धीरे धीरे हम देखते हैं जागृति जी कि भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने संपर्क तो आसान बना दिया है श्रोता साथियों, लेकिन जुड़ाव को कम कर दिया है। आमने सामने बातचीत कम हो गई है, लोग असली बातचीत की बजाय वर्चुअल दुनिया में ज्यादा जीने लगे हैं।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आज के समय में लोग अधिकतर अपने फायदे और स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगे हैं। रिश्ते भी अब लाभ हानि के आधार पर बनाए गए हैं।

0: लेकिन अब अंजलि लोग अपनी भावनाओं को छिपाने लगे हैं। जब दिल की बात दिल में ही रह जाती है तो रिश्ते केवल दिखावे तक सीमित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवारों के बढ़ने से रिश्तों में जुड़ाव कम हुआ है। पहले परिवार के हर सदस्य के साथ गहरा संबंध होता था, लेकिन अब सीमित लोगों के बीच ही संबंध रह गए हैं, जिससे अपनापन कम हो गया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आजकल मैं की भावना हम पर भारी पड़ रही है। लोग अपने फायदे के अनुसार रिश्ते निभाते हैं, जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे रिश्तों में सच्चाई और गहराई खत्म हो जाती है। संयुक्त परिवार की जगह श्रोता साथियों अब एकल परिवार ने ले ली है। पहले रिश्तों में जो मिलना जुलना होता था, अब रिश्ते केवल खास मौके तक सीमित हो गए हैं, इससे अपनापन भी कम होता जा रहा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब रिश्तों में विश्वास नहीं होता तो लोग दूरी बना लेते हैं। एक दूसरे पर शक करना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, यह सब रिश्तों को केवल औपचारिक बना देता है।
0: बिल्कुल।
1: और रिश्तों में औपचारिकता के कई सारे दुष्परिणाम हैं, जैसे कि लोग पास रहते हुए भी दूर महसूस करते हैं। रिश्तों में सच्चा सहारा न मिलने से व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और औपचारिक रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं। जब रिश्ते कमजोर होते हैं तो समाज भी कमजोर होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रह रही है रिश्तों में औपचारिकता बढ़ने के कारण और उपाय को लेकर, तो ये बातें

0: मिलते हैं। यही अब बात करते हैं कि रिश्तों में औपचारिकता कम करने के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों आपको कहना चाहेंगे कि समय देना सीखें। रिश्तों को समय देना सबसे बड़ी जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार के साथ बैठकर बातचीत करें, दोस्तों से मिलें और समय ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। दिल से बात करें, सिर्फ औपचारिकता न निभाएं, अपनी भावनाएं साझा करें और दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनें।
1: जी हाँ, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि संयुक्त परिवारों के टूटने और एकल परिवारों के बढ़ने से रिश्तों में जुड़ाव कम हुआ। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, पहले परिवार के हर सदस्य के साथ गहरा संबंध था, लेकिन अब सीमित लोगों के बीच ही संबंध रह गए हैं, जिससे अपनापन कम हो गया है। इसी के साथ रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अहंकार होता है। लोग अपनी गलती मानने या पहले पहल करने से बचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संवाद की कमी के कारण छोटी छोटी बातें बड़ी दूरी में बदल जाती है और रिश्ता औपचारिक बन जाता है। श्रोताओं, जैसे कि आपको बताएं तो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय देना बहुत जरूरी है, चाहे दिन में कुछ मिनट ही हो, लेकिन अपनों से दिल से बात करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: मन

0: साथ ही हमारे अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि आज के दौर में जहां जीवन की रफ्तार तेज हो गई है श्रोताओं, वहां रिश्तों में औपचारिकता बढ़ना स्वाभाविक सा लगने लगा अंजलि। लेकिन ये स्थिति हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए खतरनाक है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्ते केवल औपचारिक शब्दों और दिखावे से नहीं चलते श्रोताओं, बल्कि सच्चे भाव, समय, संवाद और विश्वास से मजबूत होते हैं।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि रिश्तों को लाभ हानि से ऊपर हमें रखना है, बिना स्वार्थ की मदद करनी है और अपनापन हमें दिखाना है। इसी के साथ श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि छोटे छोटे प्रयास करें, किसी का हाल पूछना, छोटी खुशियों में शामिल होना, धन्यवाद और माफी कहना। जागृति जी, ये छोटे कदम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। त्योहारों पर मिलना, परिवार के साथ समय बिताना रिश्तों को जीवित रखता है, इसलिए हमें पुरानी परंपराओं को भी अपनाना है। एक कहानी के माध्यम से हम आपको रिश्तों का महत्व बताना चाहेंगे कि एक गांव था, उसमें दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। जागृति जी, पहले दोनों हर दिन मिलते, बातें करते, हर सुख दुख में साथ रहते। समय के साथ रवि शहर चला गया और नौकरी में व्यस्त हो गया। अब वह केवल त्योहारों पर हैप्पी दिवाली का मैसेज कर देता था। मोहन को लगता था कि दोस्ती अब सिर्फ औपचारिक रह गई है। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया, लेकिन रवि को पता ही नहीं चला। जब महीनों बाद उसे खबर मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत गांव आया और मोहन से मिला। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि रिश्ते केवल मैसेज से नहीं बल्कि समय और भावना से चलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसने फैसला किया कि अब वह अपने रिश्ते को समय देगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई, सच्ची और मजबूत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते जो हैं उनमें औपचारिकता नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के समय में ये जो समस्या है वो गंभीर रूप ले चुकी है। यह समस्या धीरे धीरे हमारे जीवन से खुशियां और सुकून छीन रही है। यदि हम समय रहते इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे रिश्ते केवल नाम के रह जाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमें समझना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारे रिश्ते हैं। यदि हम इन्हें समय रहते नहीं संभालेंगे तो एक दिन हम सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोताओं, आज ही निर्णय लें कि हम अपने रिश्तों को औपचारिकता से निकलकर सच्चे अपनापन और प्रेम की ओर ले जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि रिश्तों में बढ़ती औपचारिकता कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि हमारे बदलते समाज का एक गंभीर संकेत है।
1: बिल्कुल,
0: ये धीरे धीरे हमारे जीवन से अपनापन, विश्वास और खुशी को कम कर रही है। हम सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अनजाने में भी उन रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे।
1: बिल्कुल,
0: सच तो ये है कि रिश्ते कोई बोझ नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये वो खूबसूरत सहारे होते हैं जो हमें मुश्किल समय में संभालते हैं, हमारी खुशियों को दुगुना करते हैं और हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। अगर इन्हीं रिश्तों में औपचारिकता आ जाए अंजलि, तो जीवन केवल एक मशीन की तरह बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ भावनाएं नहीं केवल दिनचर्या होती है। हमें समझना होगा कि समय नहीं है, ये केवल एक बहाना है। असली जरूरत है मन से जुड़ने की इच्छा। जब हम दिल से किसी के लिए समय निकालते हैं अंजलि, उनकी बात सुनते हैं, उनकी खुशी दुख में शामिल होते हैं, तभी सच्चे और मजबूत रिश्ते बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आप अभी इसी पल एक छोटा सा कदम उठाइए, किसी अपने को फोन कीजिए, उनसे दिल से बात कीजिए या बिना किसी कारण उनके पास बैठकर मुस्कुरा दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: यकीन मानिए छोटे छोटे कदम ही रिश्तों को औपचारिकता से निकालकर सच्चे अपनापन की ओर ले जाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से चलते हैं। यदि हम औपचारिकता की जगह अपनापन चुने तो न केवल हमारे संबंध मजबूत होंगे बल्कि जीवन भी अधिक संतुलित, सुखद और अर्थपूर्ण बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता श्रोता साथियों इस बात की है कि हम अपने व्यवहार में सच्चाई, संवेदनशीलता और समय की भागीदारी बढ़ाएं। छोटे छोटे प्रयास जैसे कि किसी की बात ध्यान से सुनना, बिना वजह हालचाल पूछना या मुश्किल समय में साथ खड़ा होना रिश्तों को फिर से जीवंत बना सकता है। रिश्ते की असली पहचान उसकी सहजता और गर्मजोशी में होती है, न कि औपचारिक शब्दों या दिखावे में। जब हम रिश्तों को सिर्फ निभाने की जिम्मेदारी मान लेते हैं तब वे बोझ लगने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें दिल से जीते हैं तब वही रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत सारी बातें रह चुकी हैं, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जहाँ हम बात करते हैं स्वास्थ्य की और सही पोषण की, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है।
0: जी
1: बात करेंगे दोस्तों विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि साथियों अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द या चक्कर जैसी समस्याएं क्यों हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मनीषा, और वो है शरीर में जरूरी पोषक तत्व या फिर विटामिन की कमी। आज हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि विटामिन डी और B12 क्या होता है, इनकी कमी क्यों होती है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। साथ ही इससे कुछ प्राकृतिक तरीके भी हम जानेंगे जिससे इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में अनियमित खान पान और धूप से दूरी के कारण लोगों में पोषक तत्वों की कमी तेजी से बढ़ रही है। इसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी सबसे आम हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: ये दोनों विटामिन श्रोता साथियों हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, तंत्रिका तंत्र, खून के निर्माण और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे कि श्रोता साथियों हमें थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द, मानसिक तनाव देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है। इसका महत्व यह है कि हड्डियों और दांतों को यह मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ,
1: कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है मनीषा, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
0: जी हाँ,
1: अगर बात करें कि विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं तो दोस्तों, हड्डियों में दर्द रहता है, बार बार थकान हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी बनी रहती है, बच्चों में रिकेट्स की समस्या होती है और बुजुर्गों में हड्डियों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं होने लगती है।
0: जी हाँ,
1: और अगर बात करें कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप सबसे बड़ा स्रोत है। रोज सुबह आपको 8 से 11 बजे के बीच में 15 से 30 मिनट धूप लेनी चाहिए।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, ऐसे में चेहरे, हाथ और पैरों को आप खुला रखें। सनस्क्रीन के बिना हल्की धूप लेना काफी फायदेमंद होता है।
0: जी हाँ कशिश,
1: साथ ही आहार में भी कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि दूध और दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनका सेवन हमें अधिक करना है। साथ ही हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन से जुड़े जो चीजें होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं
0: जी,
1: उनका भी हमें सेवन करना है।
0: जी
1: और दोस्तों, अगर कमी बहुत ज्यादा लग रही है आपको, लक्षण बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ कशिश, अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि विटामिन B12 क्या है और इसका क्या महत्व है।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में साथियों मदद करता है। इसके कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि खून का निर्माण करना, दिमाग और नसों को स्वस्थ रखना, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना और साथ ही DNA निर्माण में भी ये मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कशिश, अगर हम बताएं श्रोता साथियों को कि विटामिन B12 के कमी के कारण क्या है, जैसे कि श्रोता साथियों पाचन तंत्र की समस्या, उम्र बढ़ना, गैस्ट्रिक या आंतों की बीमारी, लंबे समय तक कुछ दवाइयों का सेवन करना, साथ ही कशिश अगर हम बात करें विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो श्रोता साथियों कमजोरी और थकान हमें हो जाती है, हाथों में और पैरों में झंझनाहट से होती है,
1: बिल्कुल
0: चक्कर आना, भूख जैसी समस्याएं हमें हो जाती हैं, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है और साथ ही हमें जीभ में जलन या लालिमा दिखाई देती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, तो ऐसे में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। अगर बात करें कि इसे कैसे पूरा कर सकते हैं तो जो पशु आधारित खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, ऐसी चीजों का हमें सेवन करना है।
0: जी हाँ
1: साथ ही दोस्तों आपको बताएं तो हम जीवन शैली में भी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम हम करें, संतुलित आहार हम लें, तनाव कम करें और नियमित स्वास्थ्य जांच हमारी करवाते रहें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मनीषा हम देखते हैं कि जब हम नियमित रूप से हमारे शरीर की जांच करवाते हैं तो हमें लक्षण दिखने से पहले ही ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है या कौन सी समस्या हमें हो रही है, इससे हम जल्द से जल्द अपना इलाज करा पाते हैं और हमें कोई गंभीर समस्या होती भी नहीं है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें इसे लेकर हमारी बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों की मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले हम विटामिन डी और B12 के लक्षणों, कारणों और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जान पाए थे जिससे हम विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। यही अगर कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में बताएं साथियों, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरागत जीवन शैली जैसे कि सुबह की धूप, घर का बना भोजन, शारीरिक श्रम, इन सब में ही दोस्तों स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। आधुनिक जीवन में हमने इन सभी चीजों से दूरी बना ली है साथियों, जिसका असर सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर हमें देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि विटामिन डी और B12 की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन इसे सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता से आसानी से दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप याद रखें कि जो धूप होती है वो आपका सबसे सस्ता और असरदार डॉक्टर हो सकता है। संतुलित आहार आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है और जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है दोस्तों। इसलिए अपने शरीर की सुनिए, सही पोषण उसे दीजिए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते रहिए साथियों।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पुराने समय में लोग प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते थे जिससे उन्हें इन विटामिनों की कमी नहीं होती थी।
0: बिल्कुल,
1: सुबह जल्दी उठकर धूप लेते थे, ताजा और घर का बना हुआ भोजन करते थे, खेतों का काम और शारीरिक गतिविधियां भी करते थे। श्रोता साथियों, इन आदतों को अपनाकर आज भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इस तरह कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी आज भी सामान्य समस्या बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सही जानकारी और जागरूकता से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। श्रोता साथियों, प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि धूप और संतुलित आहार को अपनाकर इन विटामिनों की कमी से बच सकते हैं हम। साथ ही श्रोता साथियों, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम अपने शरीर की जरूरतों को समझें और समय रहते उचित कदम उठाएं। याद रखें साथियों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सही पोषण ही उसका आधार।
0: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें होती है जिसके कारण भी इन विटामिन को बढ़ावा मिलता है, इन विटामिन्स की कमी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करने लगे हैं, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें हैं हमारी श्रोता साथियों, साथ ही हम देर रात तक जागते रहते हैं और फास्ट फूड का हम बहुत ज्यादा सेवन करने लगे हैं, जिसके कारण हमारी जीवन शैली बदल चुकी है मनीषा।
1: बिल्कुल,
0: और ये जो आदतें हैं वो शरीर के पोषण संतुलन को बिगाड़ देती है जिससे हमारे अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए दोस्तों हमें पारंपरिक खानपान को अपनाना चाहिए क्योंकि हमारे भारतीय भोजन में कई ऐसे तत्व हैं जो शरीर को संतुलित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, छाछ, दही, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज। दोस्तों ये सीधे विटामिन डी या फिर B12 हमें नहीं देते, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाकर इनके अवशोषण में मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसका हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंध भी बता सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि मनीषा बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि इन विटामिन्स की कमी का असर हमारे दिमाग और मन पर भी पड़ता है। इससे श्रोता साथियों हमारा मूड खराब रहता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं और ध्यान केंद्रित करने में भी हमें कठिनाई होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी हमें इनकी कमी को पूरा करना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि विटामिन डी और B12 केवल शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को प्रभावित नहीं करते बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
0: जी जी,
1: इनकी कमी श्रोता साथियों नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी समस्याओं को आमंत्रित करना है। यदि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें साथियों, जैसे कि धूप लेना, संतुलित आहार को अपनाना और सक्रिय रहना, तो इन समस्याओं से कशिश हम आसानी से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर के लिए दवाइयों से ज्यादा जरूरी है सही आदतें।
0: जी बिल्कुल,
1: धूप, संतुलित भोजन, सक्रिय जीवन, यही है असली उपचार।
0: बिल्कुल मनीषा, तो हम कह सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत से ये बात साफ हो जाती है कि विटामिन डी और B12 की कमी केवल एक पोषण समस्या नहीं है
1: जी,
0: बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली का श्रोता साथियों संकेत है।
1: बिल्कुल,
0: हम जितना सुविधा और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं उतना ही धीरे धीरे अपने शरीर की मूल आवश्यकताओं से भी हम दूर होते जा रहे हैं साथियों।
1: जी हाँ,
0: आप याद रखिए कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे केवल चलाते रहना ही काफी है, बल्कि ये एक जीवंत व्यवस्था है जिसे सही समय पर सही पोषण, धूप और आराम के साथ साथ देखभाल की भी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ
0: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि कोई अच्छा स्वास्थ्य किसी दवा की दुकान में नहीं मिलता बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छुपा होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: अगर हम जागरूक हो जाएं तो कल हमें किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए साथियों खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार को जागरूक बनाएं और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: जी हाँ,
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ मनीषा, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी
1: जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: जी हाँ।
1: और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहन बोनो गीत तो आयशु पूर्ण और गीत बात एक वक्त फिर अपने पास फरम कार्यक्रम समस्या समाधान में जिम के गीत के पहले अपने समस्या ने बारे में जाने ऐसे कहानी अपने हम रहू चाहूंगा बहन बोनो की एक छोटी सी घटना है। एक स्कूल में भणवा वाली सूरी हती ई रोज से बाजार थे की चिप्स ने नूडल ने ई खाई लेती। धीरे धीरे ई खावानू इनी पसंद बनी गयो ने घर नु खावानू इने पसंद ने आबा लाग्यो। कुछ टाइम बाद इन शरीर में कई शकक इन्हें पेट में दर्द ने कमजोरी महसूस थावा लगी। जई वगत इन्हे मम्मी पापा इन्हें अस्पताल ले गया तो डॉक्टर कीधु कि आ परेशानी गलत खान पान की आदत तकी है। डॉक्टर ने सलाह तकी इन माँ बापे इन्हें पौष्टिक आहार में भोजन फल ने दूध आलव शुरू करो। धीरे धीरे इन सेहत में सुधार थे गयो। घटना तक आप हीक ले सको कि आप खान पान की आदत जो है ई हीदू असर करे है अपने स्वास्थ्य माते।
1: हो वेंजली बोन एना साथे अपनी बोन ने अपने बताड़ो चाहूंगा कि आपणे जे जंक फूड नी आदत है ई केम वधी रही है आपणे भाई बहनों ने आपणे बताड़ा। तो पहलू कारण है कि आकर्षक विज्ञापन ने स्वाद ने कारण टीवी मोबाइल ने सोशल मीडिया माते फास्ट फूड आपणे ने आकर्षक करे है तो आपणे जल्दी प्रभावित थई जाह। बीजो कारण है आपणी व्यस्त जीवन चली जेम कि आपणे पहले भी कीधु तो कि घणाय मन का एवं रहे कि ई जल्दी जल्दी में एने नेम लागे कि आपणे बणने नु खावानु लई आवा तो आपणे टाइम बची जागा।
0: हवे
1: तीसरो कारण है कि आपणे जे दोस्त रहे हैं एना ने माहौल आलवो जुवे तो एवा में हूँ करा तो एवा में भी आपणे बाणने सलज खावा बल्ले।
0: हवे
1: तो आपणे देखा अंजलि बोन कि घणा सूरन घणा युवा आपणे दोस्त ने दीखी ने भी जंक फूड खावा लागी जाए हैं। चौथो कारण है कि सुविधा ने उपलब्धता यानी कि आजे लगभग आपणे हर बाजार ने गली में फास्ट फूड आसानी तक ही मिली जाए है। एटले मन का नेम लागे कि आपटी और आकर्षित ने आपणे आने खावू सुवे है। तो भाई बहन आपने कहंगा कि आ तो जंक फूड नी आदत केम वधी इना बारे में बताड़ू। आईस अगर समाधान हूँ थई शके इना बारे में आपने बताड़ो तो हवे सवाल आवे कि आ समस्या नु समाधान हूँ है। तो सब थे की मोटू समाधान यही है कि घर नु भोजन ने आपने प्राथमिकता ली है। भले टेम लागेगा पर आपने घर नु खावा नु खंगा तो आपने शरीर में पोषण रहेगा। घर नु भण्यो थको भोजन ताजा रहे स्वच्छ रहे इनमें पोषण भी रहे। इना तक आपने शरीर में जे भी जरूरी तत्व जुए
0: આપણે સ્વાસ્થ્ય બદલે આપણે ઘર મેં હલકું પૌષ્ટિક ભોજન બનાવીને ખાઈ શકો જેમ કે પોહા ઉપમા દલિયા ફળ સલાડ દહી આ સબ સેવન કરવા થકી આપણું સ્વાસ્થ્ય જે હે એ અસલ રહે ને નાના સૂરજ હે बचपन तक ही आपने पौष्टिक भोजन न महत्व ने हम साड़व है। स्वस्थ जीवन शैली हरते अपना भी है नानु हूँ महत्व है ई भी बताड़व होगा। इने साथे आपने नियमित व्यायाम ने सक्रिय जीवन जीवू है जिंदगी आपने सही भोजन ने हाथे हाथे शारीरिक गतिविधि भी थी जाएगा।
1: हो अंजलि बोन एना साथे आपने भाई बोनो ने आपने बताड़ंगा की स्वाद नो आनंद लेव गलत नहीं पर अगर स्वाद ने पसाड़ी आपने आमज भागत रंगा तो ये आपणे स्वास्थ्य ने नुकसान आलेगा। तो आ चिंता नो विषय बनी जागा। तो आपणे ने समझवो होगा कि स्वस्थ शरीर एक सुखी जीवन नी आधारशिला है। अगर आपणे ने आपणो शरीर मजबूत राखवो है ने स्वस्थ राखवो है तो आपणे ने आपणे घर नो काम आपणे परिवार ने समाज बल्ले बेहतर योगदान आलवो पड़ेगा। तो जेम के आजना कार्यक्रम ने माध्यम थी अंजलि बोन आपणे जाण्यो कि जंक फूड नी वधती आदत आपणे स्वास्थ्य बल्ले केवी समस्या बनती जई रही है ने आने आपणे हरते नियंत्रण કરી શકાય। તો ભાઈ બોન આપણે સૌને આ સંકલ્પ લેવું જોઈએ પ્રણ લેવું જોઈએ દ્રઢ સંકલ્પ લેવું જોઈએ કે સ્વસ્થ અને સંતુલિત ભોજનને આપણે અપનાવંગા ને જંક ફૂડની આદતને સીમિત રાખંગા। આપણે ના નથી કે આપણને ખાવું નથી લેકિન આપણને સીમિત રાખવું હે।
0: હવે જાગૃતિ બોન આપે સહી કીધું તો અણી પ્રકાર થકી વાતે કાર્યક્રમમાં ઘણા કાની થઈ ગઈ હે ને હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલે આપણે ભાઈ બોનોને આપણું પતું બતાડતા ताकि आजनो आ कार्यक्रम एणाने केवू लाग्यू एने बारामी राय सुझाव आपणने आली शके आपणे अणपता माते।
1: अमारो पतो है कार्यक्रम समस्या समाधान वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी भले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: તો ભાઈ બોનું ફેરી મલંગા અણસ કાર્યક્રમ મેં અણસ ટેમ માટે એક નવા વિષય નિહાતે તારુદી
1: રામ રામ રામ રામ

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।